आप क्यों नहीं छोड़ देते? इतने भी खुफिया नहीं है आप। पहले दिन से आप जो इत्र लगाते हैं उसकी खुशबू पहचानते हैं हम।

0: love. Yes, love makes the world go round, but Chunka Purplicious, you make Santana and the Lotus Landers. We love you lots. Santana, rock big time with Chunka Purplicious.
1: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

सखियों चलो वृंदावन की ओर चलते हैं, वहाँ पे माखन मिश्री मलाई रबड़ी सब कुछ मिलता है।

दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये
1: रंगी।